0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो
2: Trying to get this money for the future.

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो इटी विनो इबी काय और रेडियो के कैन Another Brasil production.

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो